मज पे ईसा सन हम चुना दर मज पे ईसा सन कज मोहब्बत बा खुदा दा रंग रंग कज मोहब्बत बा

गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शबद रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अयारे मा तू बेअल अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहुरंगी सब तेरे निया तू बेअल ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महा शिव जो करी तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा।

सिफ्त सलाह करने वाला, कीर्ति करने वाला, उसनु गुरु महाराज ने ढाडी का नाम दिता है। इतिहास विच पुराने ग्रंथां विच जिक्र आउंदा है कि भगवान की उस्तत करने वाला जो हर वेले अपने हत्थां दे विच वीणा लैके रखदा सी, जिसका नाम नारद करके आया है, हर वेले प्रभु की उस्तत करदा सी, कीर्तन करदा सी परमात्मा। एक वे नारद भगवान ने प्रभु कोल एक सवाल किया, है भगवान जे तेरे दर्शन करने हो तां दस कित्थे तेरे दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि तेरे दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। प्रभु का मिलाप भावें कोई आखे के हत्था दियां हथेलियां दे विचकार दर्शन करा दें, कोई आखे त्रिकुटी चढ़ा के तेन दर्शन करा दें, कितने ही कर्मकांड करके कोई आखे के दर्शन हो जान, ये नामुमकिन है, ये पखंड है, कर्मकांड है, इंज दर्शन नहीं होंगे उसके। ओदे दर्शन भगवान नारद कहते हैं कि ऐ परमात्मा तेरे दर्शन करने होन तां कित्थे दर्शन करा, तां कहते हैं कि भगवान ने उस वेले कहा, ऐ भगत जे मेरे दर्शन करने होन, ना मैं किसे दक्षिण विच वसदा हाँ, ना किधरे पश्चिम विच वसदा हाँ, अते ना ही किसे खास स्थान ते मेरा वासा है, ना मैं मंदिर विच हाँ, ना किसे मस्जिद विच, ना किसे गुरुद्वारे विच, ना किसे गिरजे विच, जेड़ा मैनू इन्हां थावां ते लोड़दा है वह भरम विच है, जे मैनू लभना होवे तां मैं जिथे संगत प्रभु दे भगत जन बैठ के कीर्तन करदे होवन, उन्हां दियां जिथे जुतियां पईयां होवन, उन्हां दी जुतियां दी थां दे उत्ते उन्हां दी चरण धूड़ दे विच मेरा स्थान। भगवान अपने भगतां दे वस है, उन्हां दी संगत भगत जेड़े हन भावें जिथे मर्जी उसनूं प्रगट कर लैण, भगत ने चाहिया तां पत्थर दे विचों वी प्रगट कर लैण, जे भगत ने चाहिया तां उस परमात्मा कोलों अपनी खेती दे विच हल भी जुताया, अपने डंगर भी उस कोलों चुगवाए, ए भगतां दी खेड है जिन्हां नूं प्रतख दर्शन हुंदे हन उस वाहगुरु दे। परमात्मा ने कहा है, ए नारद मेरा घर मेरा स्थान साध संगत दे विचकार है, उस तो सिवा मेरा कोई स्थान नहीं। जेड़े उस्तत करते हैं, सिफत सलाह करते हैं, एक मन होके जपते हैं, कीर्ति दे विच जुड़े हुए हैं, निष्कपट होके, निर्छल होके, निस्वार्थ होके जेड़े कीर्ति करते हैं प्रभु दी, उन्हां नूं मैं प्रतख अंतस्करण रूप विच अंतर आत्मिक दर्शन देंदा हाँ, उत्थे मेरे दर्शन होंदे हैं। और भगत नारद इतना प्रभु का निकटवर्ती सी, प्रभु की प्रसन्नता से उस भगत नारद उत्ते, क्योंकि वह कीर्ति करने वाला सी। तो गुरु महाराज ने गुरबाणी दे विच कीर्ति करने वाले, कीर्तन करने वाले, सिफत सलाह करने वाले ढाडी का नाम दिता है।

की परियोजना लेके आया है। अगू गुरु पातशाह जी ने एक सवाल किया, एक मंग की थी।

ऐसा सवाल लेके एक वेद गुरु नानक भी अपने कर्ता पुरख वाहिगुरु दे उस पवित्र स्थान ते पहुंचे सन। लोकां ते भावें उस वेले समझे सी कि गुरु नानक वेई नदी दे विच इशनान करन दे बहाने डुब के मर गया, क्योंकि मोदी खाने दा हिसाब तेरा तेरा करके लुटा दिता। ते जदों हिसाब मंगिया गया होवेगा उस वेले बहुत सारा घाटा जिस वेले नजर पिया होवेगा, तां गुरु नानक वेई नदी विच डुब के मर गया। ऐसी ना समझ लोकां दे ख्यालात जिन्हां ने कदे गुरु नानक नूं पछाणिया तक नहीं, लेकिन जिन्हां ने पछाणिया जिन्हां ने गुरु नानक नूं जाता। बेबे नानकी कहिंदी है, मेरा गुरु नानक जिहड़ा डुब्या नूं तारन हार है वह आप किवें डुब सकता है, उहदा इह कोई कौतक है। और सचमुच जदों तीसरे दिन फिर गुरु नानक प्रगट होए और उस वेले संसार दे सामने एक ऐसा पैगाम लेके आए

हे वाहिगुरु, संसार सड़ रहा है। कोई ऐसी वस्तु दे जिसनू मैं संसार दे कुल्ले पटके लोकां नू जाके वरता सकां। अरदास करते हैं,

पातशाह जी के रूप में सारे ही गुरु नानक नाम लेवा गुरु सिखां नूं प्राप्त है। जो इसनूं जपदे हैं, जो इसनूं अमल विच लिआउंदे हैं।

हर जस श्रवण सुनावना, हर जस श्रवण सुनावना। तुद आवत मेरा मन तन हरिया, तुद आवत मेरा मन तन हरिया। हर जस

तैं रावण घर खबर ना पाई, क्या जाना क्यों मरेंगे कैसा मरना होए, मत कोई जानो अवर कछ सब

और एक जंगल समान है जिस दे दूर दूर तां बड़ी भयानक अग लगी हुई है। जो अग्नि वड़े वड़े रुखां नूं पले हुए रुखां नूं सारदी तुरी जांदी है। ते जे पिछे वेखिए तां कोमल बूटे होर हरे होंदे आउंदे हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु दी रचना सब में जोत जोत है सोए, एक पासे संसार नूं समाप्त कर रहा है, एक पासे संसार नूं जन्म दे रहा है। उस दी जोत सदा परिपूर्ण है। जिस तरह अनेकां घड़ियां दे विच जल हुंदा है ते सब घड़ियां विचों आकाश मंडल नजर आ रहा है। घड़े जल दे भरे हुंदे हन ते उस जल विचों आकाश मंडल नजर आ रहा हुंदा। ते जे कोई कड़ा टुट जावे तां आकाश नहीं मरदा, केवल ए शरीर दा ठीकरा ही टुटदा है। इसे तरह ही संसार ते जो जीव आउंदा है, साहिब कहंदे हन कौन कहंदा कि फलाना मर गया है, नहीं कौन मुआ रे कौन मुआ, ओ तां पवने में पवन समाया, पंज तत्तां दा इंसान बनाया है। ओ पंजे तत्त जदों वक हो जाते हैं इंसान की मृत्यु हो जाती है। साहब कहते हैं पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक रोमन हारे की, कमन टेक कौन मुआ रे कौन मुआ। ये अकाल पुरख वाहिगुरु की रचना है। ये जग ये सारा संसार उस ईश्वर की कोठड़ी है, रचना है। साहब बाणी विच इस प्रकार दस रहे हैं।

साहिब सिफत सवालियो जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता ओ जो किछ कर

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, धुन आप वजाए आपे, आपे जोगी पुरक है प्यारा, आपे ही तप तापे, आप

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संग

बात भूले, कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे, कहे मोन आवे कथो ताह कैसे, कहूं नाद है के भली भांत बाजे, कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तू फिरत भीख, कहूं महादान होय के मांगो धन देत हो।

कऊ शस्त्रधारी कऊ विद्या के बिचारी कऊ मारत आहारी कऊ नार के नकेत हो कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

राजे ने सोचा मैनू नमस्कार करेगा, पर जदों ऋषि ने ना नमस्कार की क्योंकि वह तो समाधि विच बैठे हुए सन, गुस्सा आ गया। कहन लगे मेरे राज विच एक ए फकीर, मैनू इन्हें उठ के नमस्कार नहीं की, इनू मैं इस गल का मजा चखावांगा। कहिंदे ने एक मोया होया सप पिया सी, अपने धनुष नाल चुकिया ते वह मोया होया सप उस ऋषि की गलदे आले दुआले लपेट दिता, उसी गर्दन विच पा दिता कि जदों इहदियां अखां खुलण गियां डरेगा। वापस आ गया अपने राजमहल विच। उधर ऋषि दे पुत्तर नूं जदों इस गल दा पता लगा कि राजा ने तेरे प्यो नाल मजाक कीती है, आया उहने आके अपने प्यो दे गल विचों ओह सप लाया, नाल ही उहने श्राप दिता कि राजे नूं इतना माण अहंकार हो गया है, अज तों सतवें दिन राजा सप दे डंगण नाल ही मरेगा, श्राप हो गया। इधर जदों राजमहल दे विच राजा आया, मुकुट ला के रखिया, एकदम बुद्धि फिर स्वच्छ निर्मल होई, पश्चाताप कीता कि ऐ राजन तू ते अज बहुत ही घोर पाप कर बैठे हैं, पर हुण की बनदा है। अखीर ए भी गल पता लगी कि सप दे डंगण नाल तेरी मृत्यु होनी है। कहिंदे ने साधु दा बचन कदे खाली नहीं जांदा। इने अपने राज पुरोहित सदे, बड़े बड़े ऋषि तपीश्वर सदे कि किवें इस मौत तो बचिया जाए, सप ना आवे। किसी ने कुछ दसिया, किसी ने कुछ दसिया, अखीर कुछ मंत्रियों की सलाह हुई कि सप नहीं आएगा, जे सप ना आया तो मौत नहीं हो सकती, पानी दे विच घर बनाया जाए, क्योंकि जहरीला नाग जिहड़ा है पानी दे विच नहीं जांदा, ते जे किधरे पानी चलिया भी जाए तो शीशे दे उत्ते सप नहीं तुर सकदा, इस करके शीशे दा एक महल बनाया जाए। राजा शीश महल दे विच बैठे, जदों उह समां लंघ जाएगा राजा बच जाएगा, इहदी मौत नहीं होवेगी। इसे तरह कीता गया, दरिया दे विच शीशे का एक घर बनाया गया, राजा उहदे विच बैठिया अपना सिंघासन ला के। निर्धारित समय ते जदों उह समां पुज्जा आके चारे पासे पहरेदार लगा दिते, कोई भी परिंदा तक इत्थे ना आ सके। लेकिन की होया, रोज जिहड़ी मालण आउंदी सी फुल्लां दा हार लैके, गुलदस्ता लैके राजे नूं भेट करन वास्ते, उहनूं पता लगा ते इसे पासे आ गई। पहरेदारां ने सोचिया इह स्वागत विच लियाई है, रोज ही लियाउंदी है फुल ते गुलदस्ते, उहनूं जाण दित्ता। इह मालण जदों राजे दे कदमां विच इहने जाके फुल्लां दा गुलदस्ता भेट कीता, गल विच पाया ओह फुल्लां दा हार, बड़ी बेहतरीन खुशबू इसनूं आई, फुल्लां दा जिहड़ा गुलदस्ता सी हथ विच लै लिया। इसने कहन लगा मालण अज ते इहदे विच तूं बहुत ही खूबसूरत फुल गुंद के लियाई है, बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। ओह खुशबू नूं लैण वास्ते कहिंदे ने ज्यों ही नक नाल इहने गुलदस्ता लाया, कहिंदे ने कि उस फुल दी पंखड़ी दे विच ततिछक नाग, जिस बारे ऐसा दसिया गया कि वह इच्छा नाल वड्डा रूप धारण कर लैंदा है ते इच्छा मुताबक छोटा रूप धारण कर लैंदा है, एकदम प्रगट होया, मारिया डंग उसने, राजा परीक्षित उत्थे ही प्राण त्याग गया। गुरु अर्जन देव पातशाह अपनी पवित्र बाणी विच इस घटना का जिक्र कर

पादशाह तो सवाल कीते, पादशाह तुसी अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज क्यों नहीं कीती? कहन लगे फर्क है, उत्थे रब दी कथा है, इत्थे मैं अपनी कथा कह बैठा, इसलिए अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं कीती। पातशाह तुहानू की लोड़ पै गई अपनी कथा सुनाण दी? कहन लगे लोड़ सी, जिस वेले तुलसीदास किसे प्यार विच आया, श्री राम नू भगवान राम कह बैठा, सूरदास बहुत ही सत्कार विच आ गया, कृष्ण नू भगवान बना बैठा। कोई ऐसा सिख उठ के मैनू भगवान ना कह बैठे, वाहगुरु ना कह बैठे, इसलिए मैनू अपनी कथा कहनी पै रही। पर जे पातशाह तुहाडे गुणा नू, तुहाडी महिमा नू वेख के कोई कह बैठे भई तू ते रब इको ही हो, तू ही रब है, ते फिर की होवेगा? हजूर ने बचन कीता,

आप के नजदीक चला गया। जिवें दो मित्र एक दूजे नाल गल्लां करते हैं कि दुश्मन नूं भी ना आखी जाए। मालिक कोल बैठ के कह रहा रब तू भी किठा दे।

अंतरजोत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विच दर्ज है। शब्द का मुख भाव रहाओ दी पंक्ति ते हुंदा है।

अंतरजोत राम प्रगासा गुरमुख बिरले जाने कहानी कहंदे हन बीत चुकी घटना या जेड़ी घटना घट रही है उसनु कोई सुनावे कोई कहे अगर कोई झूठी कहानी सुनावे लोग उसनु भी सुनदे हैं पर ए ते परमेश्वर दे नाम दी कहानी सच्ची कहानी और भगत कबीर साहब कह रहे हैं अंतर जोत राम प्रगासा जिस वेले इंसान दे अंदर नाम दा प्रकाश हो जाए ता फिर ओ इस कहानी नु जान लेंदा है कि परमात्मा दे मेल दी अवस्था की है पर एक गल है गुरमुख विरले जानी कोई विरला गुर

मेरा परमेश्वर मिल गया। देह कहते ने शरीर में जिदे मिलन दे नाल मेरी देह सुहावनी हो गई है। किस तरह?

कृपा कीती ज्ञान अंजन अंजन कहंदे ने सुरमा गुरु ने ज्ञान दा ऐसा सुरमा दिता कि मैनू इस गल दी सोझी हो गई राम नाम तो बगैर जीवन

ता तृष्णा रूपी जल सुख गया, मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है ये सारिया भुखा तृष्णावां खत्म कर दिंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती, हर इंसान भज रहा जिद को एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्होंने तसली नहीं, कुछ होर चाहता है। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता है। हर इंसान भज रहे है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख बहुती माया विच भी नहीं।

जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाने ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैण इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करते हैं कि हर वेले परमेश्वर वाल ध्यान रखो जिवें कीर्तन सुनदे आ दुख भुल जाते ने हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे तो दुख कलेश कदी भी तुहानूं तंग नहीं करनगे। पर इन्हां गल्लां दी सोझी हुंदी है जदों गुरु अते गुरु दी बाणी दा सानूं ज्ञान होवे। गुरु की है? गुरु है बाणी, क्योंकि गुरु बाणी द्वारा उपदेश दिंदा है। इसे वास्ते सतगुरु जी अपने शब्द विच इस तरह फरमांदे हैं,

क्योंकि बाणी गुरु देंदा है। इसे करके सतगुरा ने इंसान नु कहा किसे बेतारी दे पिछे ना लगो, बाणी नाल जुड़ो, क्योंकि बाणी परमेश्वर दी है। जो परमेश्वर कहंदे गुरु ओहो ही उपदेश करदे, ते गुरु कहंदे तुसी मैनू परमेश्वर ना कहो, मैं भी परमेश्वर दा भेजिया आया, मैं ते परमेश्वर दा सुनेहा तुहानू देना है, ते तुसी भी परमेश्वर नाल जुड़ो। ए बाणी मेरी नहीं, ए परमेश्वर दी बाणी। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विलालो। जेड़ा इंसान, जेड़ा पीर पैगंबर अपने नाल जोड़े कि सब कुछ मैं हां, मैं परमेश्वर हां, समझो वो परमेश्वर तू भुलिया होया। तो जेड़ा परमेश्वर नाल जोड़े असल विच, समझो ये परमेश्वर नाल जुड़िया होया है, क्योंकि ये परमेश्वर नाल जोड़ रहे हैं। ते सतगुरु जी कहंदे ने ए देवी देवते अवतार पीर पैगंबर सारियां नूं एक परमेश्वर भेजण वाला है, एक अल्लाह एक वाहिगुरु संसार ते भेजण वाला है, इस करके उहदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है तां परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे हैं

पर सूरज चढ़े कितना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे तामी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बार आप देखते हैं एयर कंडीशन कमरे होंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा होंदा है गुस्से दे नाल उहदे मन नूं चैन नहीं होंदा। रोशनी विच इंसान बैठा भी अंधेरे विच होंदा है अंधेरा केड़ा अज्ञान दा। अज्ञान की है अज्ञान ए है कि दूसरे

पानी टिकिया रहेगा, जे पानी नो धरती ते डोलो पानी खिलर जाएगा। इसे तरह सहिब जी फरमांदे हन, कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे। जिवें पानी घड़े विच टिक जांदा है, इसे तरह मन गुरु दे ज्ञान दे नाल टिक जांदा है, और ज्ञान गुरु तो बगैर नहीं होंदा।

परमेश्वर दी कहानी दा पता नहीं लगदा। गुरु परमेश्वर दी कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जेडे गुरु दा उपदेश सुनदे ने ओ फिर इस कहानी नूं जान लैंदे ने कि सारे विच

मंजिल तक नहीं पहुंचते। गुरु की लोड़ इस वास्ते है कि सच्चा उपदेश साढ़े हिरदे विच वसे, पर गुरु की प्राप्ति निम्रता प्यार और सेवा नाल हुंदी है। होता ते ब्रह्मा दो भरा सन, दोनों भगत ने, भगती दोनों भरा करते ने, किसे धनी पुरश ने दोनों भरावां नूं भगत जान करके अपने घर बुलाया। भगती ते करदे ने पर हाले गुरु दी प्राप्ति नहीं। दोनों जने धनी सेठ दे घर पहुंचे। उस धनी पुरश ने दोनों भगतां दी सेवा कीती, अन्न जल छकाया और तुरन लगे हैं। दोनों भरावां नूं दक्षिणा दीती, माया भेट कीती। होता वड्डा सी, वड्डे नूं वड्डा समझ के चोखी माया। ब्रह्मा छोटा सी, छोटा समझ के थोड़ी माया दीती। पर ब्रह्मा चलाक सी, उन्हें दोनों पेटावां कठियां कर लिया। घर आके अद्धी अद्धी

जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू लै, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे को रहन। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। पावे उन्हें माया तेनू बहुती मेनू थोड़ी दिती, पर गए थे आप कट्टे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए, और झगड़ा होंदा भी अक्सर देखते हैं, देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्होंने कुछ

0: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live from 20,000 feet around
1: the world. Sardar, pehla te ek pinda shaal utya, phir andra nahi ghor shaukar ka phir.
2: Shabash. Sherya, ye maal saran jaan re.
1: Chokam, Sardar. Aye, Jabra! Aye, Akhar! Aye, Jabra!
3: मेरी बॉडी तो देख रही पागल हो जाएगी।
4: सिंगिंग से कालेज देसी की हो तो जीने वालों।

झूठी हो सकती है, पर थोड़ा झूठी नहीं हो सकती। थोड़ा सुच्चा है, हर सुच्चा है। क्या बोलते हैं?

चंद्रमा की शीतलता, चंदन की शीतलता, यह शीतलता सिर्फ शरीर नूं ही कुछ शांति या ठंडक पहुंचा सकती है, मन नूं आत्मा नूं ठंडक नहीं पहुंचा सकती। चंदन मस्तक ते लाउंदे ने इसे वास्ते कि मस्तक विच दिमाग हुंदा है और दिमाग विच अनेकां फतूर हुंदे ने। दिमाग विच फतूर होवे, दिमाग विच क्रोध उत्पन्न हो जाए, सारा शरीर क्रोधा अग्नि दे विच थर थर कंबण लगदा है। मस्तक ते चंदन लाउण दा प्रतीक है शांति दा प्रदायक। लेकिन जे मन विच अग्नि होवे, क्रोध दी अग्नि, ते मस्तक ते चंदन लाया है, मन दी अग्नि नहीं बुझेगी। ओते तां बुझेगी जे इसनू हरी नाम दा रंग चढ़ावेगा, परमेश्वर दे नाम दी इसनू शांति मिलेगी, ओदा चिंतन करके इस मन नू शीतलता प्राप्त होवेगी। जरा ध्यान देना, जालम ने एक ऐसा कांड रचया जो इतिहास विच इस तो पहला किधरे दृष्टि नहीं आउंदा। इस कलयुग दी ते क्या गल है, पिछले जड़े बीते हुए समय ने, युग ने, उन्हां विच भी ऐसी घटना किधरे सुनन विच नहीं आउंदी, पढ़न विच नहीं आउंदी। पट्ठी तैयार कीती गई है, उत्ते लोह रखी है, हुक्म दिता जालम ने एदे हेठां अग बालो, लकड़ा लिया कि अग बाली गई। उत्तों जेठ दी तपदी होई ए गर्मी दी रुत, ऐसे हाल विच आखे आ गया गुरु अर्जन पातशाह जी नूं, आप इस तवी दे उत्ते बैठो, असां वेखना है कि तुहाडे अंदर कितनी क शीतलता है। तुसी जो कहंदे हो कि मैनू कोई तपा नहीं सकदा, कोई जला नहीं सकदा, असां वेखना है शीतलता कितनी है तुहाडे अंदर। धन गुरु अर्जन देव पातशाह मुस्कराए, सतनाम श्री वाहिगुरु बोल के आप तवी दे उ

वाहिगुरु की यही रजा है, मैनू परवान है। जिस हाल विच मेरा मालक खुश रहे, मैं ते ओही ओ कम करना है। जे उसकी रजा है तवी दे उत्ते मैं बैठा।

अंदर क्रोध दी अगन पड़क रही है। इन्हां दे अंदर नफरत द्वेष भावना दी अगन पड़क रही है, जो इन्हां नूं मजबूर कर दी है कि ए जुलम करन। ए सोच रहे ने कि मैं भी इस तपस दा प्रभावित हो जावां, इस नाल मैनू भी कुछ प्रभाव पवे। पर मेरे गुरु ने, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे अंदर एक नाम दा, जो सारियां शीतलतावां दा एक सोमा है, वो ऐसा अमृत नाम बख्शिश कीता है कि ए तपदे होए कड़ाहे, तपदे होए हिरदे उस नाम दी शीतलता नूं प्राप्त करके शांत हो जांदे। पर ए शीतलता, नाम दी शीतलता उन्हां नूं प्राप्त हुंदी है जिन्हां दे भाग चंगे होवन, जिन्हां दे श्रेष्ठ उत्तम भाग होवन। ते हरी नाम दी शीतलता उन्हां नूं प्राप्त हुंदी है। वरना मनुख जबान तो ते जब जरूर जपदा है उस परमेश्वर दा नाम, पर जे अंदर क्रोध दी अग्नि होवे ओ जपे दा कोई फायदा नहीं। जे अंदर लोभ दी लालसा होवे, जे अंदर नफरत होवे, द्वेष भावना होवे, उस रसना तो जपे दा कोई फायदा नहीं। तो हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारे संसार नूं एक शांति दा उपदेश दित्ता है। ए क्रोध दी अग्नि बुझ सकदी है जे नाम दा शीतल अमृत, ओ सरोवर, ओ सोमा

पूरे गुरु दा मिलाप होया उदी बख्शिश होई है। जमदूत मेरे नालों हट गए ने, उना दा सहम मैनू हुण सता नहीं रहा, वो भज गए ने मेरे कोलों।

अमृत की है, अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखा नु पियाया ते खालसा पंथ साजिया। पर इस अमृत दी कहानी बड़ी लंबी, चार युग होए ने, सात युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा टंग वखरा, अमृत लभण दा टंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोकां अमृत पीता पहलिया युगां विच, अमर होने वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे, अपने वास्ते अमृत पीता अपने भले वास्ते। पर जेड़ा अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखा नु पियाया, वो अमृत आपा वारन वास्ते, जुलम खत्म करन वास्ते, मजलूमां दी रखिया करन वास्ते। तो आओ विचार करिए, पहला सतयुग बारे के सतयुग विच ए अमृत किस तरह मिलिया ते किस तरह पीता गया। पहला हिंदू मत अनुसार कथा, उस तो बाद गुरमत अनुसार।

एक किस्सा तरती तीन हिस्से पानी मनिया गया समुंदर बड़ा वड़ा है। एक बारी देवतिया ने विचार की थी देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा से सलाह की थी सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहीदी रस्सा चाहीदा पर समुंदर अथाह है एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी तां सारियां देवतियां सलाह करके मंदरा चल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया शेष नाग नू उस पर्वत दे दुआले लपेटिया गया एक पासियों उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासियों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पास से दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले एक वरी साप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने साप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਦੈਂਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ते सारियां तू पहला जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुट देने ता नुकसान बड़ा हुंदे ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करदे जहर तों बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नू विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नू इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया जिते अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ लग गया

है अकाल पुरख, तू दरियाओ दाना बीना, तू एक दरिया है बड़ा वड़ा, मैं मछली कैसे आंत लहा, मैं एक मच्छी दी तरह वा, जिस तरह मच्छी दरिया दा अंत नहीं ले सकती कि दरिया कैडा वड़ा है, इसी तरह ऐ अकाल पुरख मैं भी तेरा अंत नहीं पा सकता। जदों ये शब्द उचारे अकाल पुरख प्रसन्न होए, एक अमृत दा नाम दा प्याला उतरिया, हुक्म होया ऐ नानक ए मेरे नाम दा प्याला है, ऐ तू पी ले। ओ नाम दा प्याला

एक गुफा च बह जा, करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना, इन्ना तेरा नाम जपा पर अकाल पुरख तेरे

सोत कंधे ने पुत्र तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नु कहंदे ने ऐ अकाल पुरख तुसा क्या सी मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंत प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पहले जन्म का नाम दुष्ट दमन सी ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं एक नवा पंथ चलाने वास्ते ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नू दया कहो जिया मैं पंथ चलावा मैं अपना सुत तो निवाजा पंथ प्रचुर कर बे को साजा अकाल पुरख दे चरणा विच बेनती की थी गुरु साहबां दी अखां बंद ने अखां दे सामने एक सूरत आई लत्तां पतलियां पर भार सहण वालियां चौड़ी छाती मत्था चमकदा अखां विच नाम दी लाली बोल फरकदे ने सोहना दाड़ा सिर ते दस्तार हाथ कड़ा गात्रे कृपान तेड़ कछहरा सोहनी सूरत देखी तो गुरु साहब जी पुछदे ने ऐ सूरत तू कौन है उस सूरत बोली मैं खालसा गुरु साहब जी पुछदे ने तू कित्थों आई है उस सूरत बोली मैं तुहाडे हिरदे विचों आई हां मैनू हुण तुसी बाहर प्रगट करो जो चाहिदा सी ओ मिल गया तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वापस आनंदपुर साहब आ गए पर सोचन लगे ये सूरत बड़ी सोहनी पर किन्नू दया मसंदा पंडता साधुआ सन्यासियां नू किन्नू दया ये सूरत क्योंकि जे आपां दुध लैण जाना होवे ते भांडे नू चंगी तरह साफ करके लजाने हैं जे दुध वास्ते भांडा साफ चाहिदा है ते अमृत वास्ते भी तां मन दा भांडा सोहना

आनंदपुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दा दरबार सजे है। एक पासे माइया बैठिया ने, एक पासे पुरुष बैठे ने। सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होए है, कीर्तन हो रहे। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतियां सन, अखां खोलियां। एक पहरेदार सिख नूं कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहे है, जाओ उसनू प्यार नाल साडे कोल लै आ। पहरेदार चला गया। दूर दरखत थले सचमुच एक सिख बैठा रो रहे है, अखां बंद नहीं, हाथ जुड़े हुए ने, पर बंद अखां विचों अथरू पै गिरदे ने। ते नाले कह रहे है, ऐ सच्चे पातशाह मैं की गुनाह कीता है, की पाप कीता है, काबुल तू आया तेरे दरबार पहुंच गया, पर तेरे दर्शन करन दा मैनू हुक्म नहीं। पहरेदार सिख पहला ते सुनदा रहा, फिर मोढ़ा फड़ के हिलाया ते नाले कहा, सिखा तू कोई पाप नहीं कीता, तेनू ते आप कलगियां वाले ने याद कीता। उससे कुठिया अखां पूंजदा होया पहरेदार दे नाल तुर पिया। जदों दरबार विच दाखल होण लगा, इत्थे भी इक पहरेदार खलोता सी। उसने कहा, ए काबल वाला सिख दरबार विच नहीं जा सकदा। नाल आया पहरेदार कहन लगा, ए दरबार क्यों नहीं जा सकदा? तां खलोता पहरेदार कहन लगा, जेड़ा वड्डा मसंद है चेतो, ओदा हुक्म है इस काबल वाले सिख नूं दरबार विच नहीं जान देना। ते सुन के नाल आया पहरेदार कहन लगा, जेड़ा चेतो मसंद दा मालिक है कलगियां वाला, मैनू ओदा हुक्म होया। ए सुन के पहला पहरेदार परां हट गया। सिख दे हाथ जुड़े ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने पहुंचे, दर्शन कीते, अखां विचों अथरू वगन लग पए। तीन दिन हो गए सन रोंदे आ, अरदासां करदे आ, गुरु दे दर्शन कीते, अपना सिर चरना ते रख दिता ते कलगीधर पातशाह सिर ते प्यार नाल हाथ फेरदे ने ते नाले बड़े प्यार दे नाल कहन लगे, सिखा काबुल तू आए, तीन दिन हो गए ने तैनू रोंदे आ, सानू पता है सिखा साडे नाल बड़ा प्यार करना है, पर साडे वास्ते बेटा की लैके आए। साध संगत, गुरु किसी चीज का भुखा नहीं, गुरु ने बेटा क्यों मंगी ए ते गुरु का कौतुक है। कहन लगे, सिखा साडे वास्ते बेटा की लियांदी। सिख हाथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह मैं की देन जूगा, सब कुछ आपदा मैं सुनियारा वा, हाथियां दे दंद दा एक कंगन जिदे विच हीरे जड़े हुए सन, मैं आपदे वड्डे मसंद चेतो नूं उदों दिता सी जदों काबल गया सी। दूसरा कंगन जिदे विच हीरे जड़े ने मैं लैके आया सां, ओ कंगन मैं चेतो मसंद नूं दे दिता,
क्योंकि चेतो ने कहा सी कि सिखा तेरे नाल गुरु साहब जी बड़े नाराज ने, तू दरबार विच ना जाई। ए सुन के गुरु साहबा ने अपने दोनों हाथ अगे कर दिते ते नाले कहन लगे सिखा है देख मेरे हाथ ते खाली ने, तेरे कंगन मेरे कोल नहीं आए। सिख ने कहा पातशाह मैं ता चेतो मसंद नू दित्ती सन, ते चेतो मसंद संगत च बैठा सी, उठ के खड़ा हो गया। कहन लगा पातशाह ये झूठ बोलदा है, ये कंगाल कंगन कितों दे सकदा है।

उस वक्त औरंगजेब सी। औरंगजेब दे जासूसा ने औरंगजेब नू जड़ी खबर भेजी, उहदे विच लिखिआ है तकरीबन 50,000 दे करीब लोकां दा इकट्ठ सी आनंदपुर साहब। संगत बैठी, कीर्तन हो रहा, बड़ा आनंद आ रहा। सिंघासन ते गुरु साहब जी विराजमान ने। अचानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चेहरे दा रंग बदली होया, चेहरे ते कठोरता आ गई। म्यान विचों कृपान खिंची ते ललकार के कहा, साध संगत मैनू एक सिर दी लोड़, पहला तां किसे नूं समझ ही ना आई। जदों दोबारा कहा मैनू एक सिर दी लोड़ है, हर पासे सहम छा गया कि ए की हो गया। गुरु साहब जी अपने सिखां दे सिर मंगण लग पए। तीसरी

प्यार कर रहे ने। इन्हें नु सारी संगत मथा टेकन लग पई। कौन आया? गुरु साहबां दे महल माता साहब देवा। गुरु साहबां दे कोल आके खड़े हो गए। झोली अगे कीती। झोली विच पतासे ने, ओ पतासे बाटी विच पा दिते ते मुस्कुरांदे होया आखिया, पातशाह मेरा हिस्सा। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे, हां साहब देवा तुहाडा भी हिस्सा। मैं अमृत तैयार कर रहा सा मुरदियां विच नवी रूह फूकण वास्ते। जात पात ऊंच नीच खत्म करके एक नवा समाज बनाण वास्ते। पर तुसां इस अमृत विच प्यार मिठास सहनशीलता भुल दिती। हुण जदों कोई अमृत छकेगा, जे चरखनियां ते चढ़ेगा तां वी बाणी पढ़ेगा, जे किसे दी खोपरी लाई जाएगी तां वी ओह बाणी पढ़ेगा, जे किसे दा बंद बंद कटिया जाएगा तां वी ओह बाणी पढ़ेगा। अमृत तैयार हो गया। अमृत तैयार करके जिन्हें पहला सिर दिता सी दया राम ने, ओदे सामने खड़े होए। एक अमृत दा चुल्ला दया राम नूं दिता। पीण दा इशारा कीता। दया राम ने अमृत दा चुल्ला जदों पीता, एक नवी बोली दिती। ते गुरु साहब ने कहा, कहो दया राम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ते हुण पंजां दे नाम भी बदली हो गए। दया हुण दया सिंह हो गया, ते तुसी हुण शेर हो। ते जिहड़ा शेर है ओह कदी डरदा नहीं। हुण तुसां जुल्म दा मुकाबला करना है, जुल्म खत्म करना है, गरीबां दी मजलूमां दी रखिया करनी। जदों पंजां ने अमृत छकिया ते हुण पंजां दे मनां दी अवस्था इह हो गई। बाप दिलासा मेरो कीना, सेज सुखाले मुख अमृत दीना। साडे बाप कलगियां वाले ने अपने हत्थां दे नाल साडे मुंह विच अमृत पाया। हुण पंजां दे अगे हाथ जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप खड़े हो गए कि सिखो हुण तुसी गुरु हो, हुण मैनू अमृत दियो। इस दुनिया विच एक नवी गल सी कि गुरु चेला बन गया ते चेले गुरु बन गए। दया सिंह कहन लगे, पातशाह असा सिर दे के अमृत लिया, तुसी अमृत मंगदे हो, तुसी की भेटा दियोगे? ता गुरु साहब ने कहा, मैं अपना पिता हिंदू धर्म दी राखी वास्ते पहला दे चुका। मेरा परिवार है, मेरा अपना आप सब कुछ भेटा कर दियांगा, पर मैनू अमृत छकाओ। पंजा प्यारिया ने गुरु साहबां नू अमृत छकाया ते हुण गुरु साहबां दा नाम भी बदली हो गया। गोबिंद राय तू गोबिंद सिंह, ते दूर सारियों एक सद उठी, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। तन है गुरु जिहड़ा आपे गुरु बनिया ते आपे चेला बनिया। एक नवा राह दुनिया नूं दिता। ए जरूरी नहीं कि गुरु हमेशा गुरु रह सकदा है ते चेला हमेशा चेला। कहन लगे नहीं, जदों खालसा साजे फेरे क्या कि हुण तुहाडे विच ते मेरे विच

आज हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते उनके चरणों की छोर प्राप्त होती कितने बड़े भाग होते हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

ज्ञान का है, गुरु सूरज के माफिक है, ये बात अलग है। हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं, ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद किए। दरवाजे खोल।